हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो 100.7 दोस्तों, और हिंदी के खंच में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ दोस्तों। और हिंदी के खंच में आप सभी के साथ, आप सभी के लिए फिर एक बार हाजिर है आप सभी की दोस्त आरजे वियली। और कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई दोस्तों? आपने अच्छे से नींद ली है या नहीं, ये बातें आप अपने संदेश के जरिए जरूर बताना। और आप सभी ने आज की सुबह बहुत ही अच्छे से शुरुआत की होगी। मैंने भी बहुत ही अच्छे से शुरुआत की है। और आपकी नींद, यस, आप सभी अच्छे से सोए होंगे कल रात। और मिंग रही थे उदे उदे पोखा कन ओम मई थैया। किसी तुम लाइ चुका मिंग रही थे तो अमोम ओ मिंग मिंग रही सतलिया लवीन ना ना खोया वांगिन मो। और तो मेरी तरह भी आप भी मिंग रही थे इन वे में थे या न चूला वांग थे खान। तो चलिए, फिलहाल जो भी हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। यस, आप सभी की सेहत अच्छी होगी। और आज आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए भी अभी शायद तैयार हो रहे होंगे, रेडी हो रहे होंगे, है ना? तो चलिए, हम भी जल्दी से अपने आज के इस सबसे पहले हिंदी के खंड की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी के सबसे पहले खंड में दोस्तों। और आज दोबारा आप सभी के दोस्त आरजे वियली के साथ एक, यस, ढेर सारे, एक नहीं बहुत ही ढेर सारी बातें हम करेंगे, वो भी प्यार भरे, ठीक है? प्यार भरी बातें। यस, तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। केसरिया अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत। मैं आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत, सबसे पहले गीत के लिए मैं सुनाना चाहूंगी। और मुझे आपके यस भेजे गए संदेशों का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिलहाल सुनाती हूँ आप सभी को केसरिया। और इस गीत के बाद मैं चलूंगी आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ। तो चलिए, ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

पर दोस्त, उम्मीद है आप सभी को केसरिया इश्क है पिया अरिजीत सिंह ने बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।

दोस्तों और यस आप सभी उठ चुके होंगे इन थोवेक तो दूरा गाइला दारकुआ जिंग दारकुआ रिदो दोना और हमारा समय दोस्तों 9:20 तक का है यस और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का समय अच्छे से बीते बहुत ही खुशी और आनंद से इसी दुआओं के साथ दोस्तों मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ बन सुनुई हो ले मैं ओ नुई चाक लौदे उप ओम ओम मा उलांग नुई शाम शाम तूर इस खंड में सबसे पहला संदेश ओ मैसेज ये बन रहा है लूट चाहते तक एम ओ इन्वेंट फिर थे तक इन्वेंट चलो हम सी के बन स्टार लोम तक जो है मसे के स्टार नंबर वन ओ मसे ओ लो ठीक लो उला ओले चान के स्टार नंबर वन दी मैं यंग ओ उजीपी अंगूर दो पानी ने मैसेज कर दूंगा और उन्होंने लिखा है कि वो इन सु अलिम ओम ले दो ने के तुम चिंगी अदिउदी ले दोन तत मई ले है जाम जेल जाम अरोन दिया अरोन जाम खारोन मेंशन ने नी सुमो उजीपी अहियान से जाम ही रेट लत मई गतिंगे ओ ala retlat mai ni zanla mate na hi athokre em manile o chan yes chan agar yes bahut bahut shukriya utpa ko mujhe sandesh dene ke liye apne bahut hi keemti waqt nikal ke mujhe sandesh bhejne ke liye aur main utpa ke liye ek line कहना चाहूंगी अभी वो मुझे सुन रहे हैं शायद वो ऑफिस जाने के बाद मुझे सुन नहीं पाएंगे दिखाना रोंदिया नुआमी रोन मिंगाई थले मन तक तक चुआंग लव मो चुवांग चुआन मैं उचीपी के लिए ये बहुत ही मतलब स्वीट पोएम सुनाना चाहूंगी ध्यान से सुनना उचीपी ओ उचीपी लौंगाई लचियांग रो हर बात का जवाब जरूरी नहीं कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है ठीक है हर बात का जवाब जरूरी नहीं कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है जब तुम चुप होते हो तब तुम खुद को सुन पाते हो लोग समझ भी जाते हैं पर कह नहीं पाते और कुछ बातें सिर्फ दिल तक रहनी चाहिए जुबान तक नहीं आनी चाहिए चुप रहने की भी एक आवाज होती है जो सिर्फ सच्चे लोग समझ पाते हैं ठीक है शायद उटीपी को ये बात जरूर समझ में आई होगी या नहीं अगर समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं मैं उनको बाद में समझा दूंगी और अगला संदेश आया है मेरे दोस्त विकुंगते की तरफ से विकुंगते अजय मोबियल तो किन इथ नो मो थौ नो अमने मे कोंगते तुलाई चु कदम छा ए अमाइ रो चु हा थाक छिन खोप मै सिंग नुन हि आ शाम शाम नुन हि ने यंगाइ लत सिया ते रो चुत्या चुत्यांग बकि नंग नि पो इन इ सिंग नुन आ खान इन नि तिन नुन मन ना आ खान हुन मन ना आ ते न थो ना आ ते शाम शाम नुन खा लो ने शाम शाम उला चान एम ज दिउलम इ चु ले रिंगोट आ रिंगोट ता एम जे टी उलामी चूले रिंगोता मो कुंगते एम जे टी उलामी चूले रिंगोत एंगे रिंगोता इन पु इन हावंग चे ती कलाउ ए अरोन ती आ हाउ एम एम लवे के मान का हाउ जोंग कन पु चमो कुंगते के दुदु इन के दुदु इन के तिथे ए ओले ओले तिवेक मैं मो कथु ओलुतुक चुआन खाते पाहियान अजय वे नमस्ते इलाप्ले ले तुर्खा मोया तुदम ओमेगा सांगते अपार पारिपु मोया मुन मोया मुन पुई मोया साइड लो इतान कल्हाने रोन्ती बोका खाते पाही

to je mu Anka, uči pi Anka mi mu si donju tu ka. Em zadiu lam i chu le ringot. It zadiu lam i chu le ringota ipu inpu in a how ang je ti ka lawe aron ti ani. Oh, tu an sa kan sia dikta. Kung te, oh, chan, uso, mahyan. RJBL, good morning, Arontia. Oh, usom, napo good morning. Oh, chan, yuzanate, imutuyem, chan, buin lam, itaw noamim, chan, iole, nuirihi, kan, kan, chuleta, nato, anuam leta, sate, Ila ron play le tu zong zong kai duty pui zong zong te le abikin itan karon thange duty nuam le arantini fel chin le mai only message ron lu chagring aron lu chakop maya to filhal bahut bahut shukriya mere dosto aap sabhi ke pyar aur bahut hi khubsurat dil se jo aapne mere liye matlab tareef ki hai un sabhi बातों के लिए उन सभी संदेशों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों मैं चाहती हूं इस तरह आप भी हमेशा मेरी तरह खुशी-खुशी अपना काम करें दोस्तों ठीक है और कभी भी उदास नहीं होना है ठीक है हमेशा खुश रहना है जिंदगी में और कहते हैं कि ना कभी-कभी पूरी जिंदगी का प्यार कम पड़ जाता है कभी-कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी में किसी का प्यार कम पड़ जाता है प्यार तो बस एक ही से मिल जाए ना काफी है निशितिया मैम प्यार तो बस एक ही से मिल जाए ना काफी है शिंगुना ह्यान मी जोंग जोंग ते मंगई ही कन दो बेरनी लाओ पखत ने न चंग चविन मंगई न थ्यांग लिम तक दोन ही अनिमेसिया द्रो मंगई न चु तो चलिए फिलहाल सुनते हैं तू जो मिला बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए मेरी तरफ से

दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तू जो मिला के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, यस, के तो अब हमारे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके गाए आवाज गाए गीत हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, बसेंगे, है ना दोस्तों? यस, ऐसे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, यस, के की तरह तो मतलब ज्यादा है, लेकिन उनकी तरह तो कोई भी नहीं बन पाएगा फिर। और यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गीत जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और एक बात मैं कहना चाहूँगी आप सभी दोस्तों से कि दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है? और जो किस्मत में नहीं होते, किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? यस, ये लाइन ना मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आपका जवाब क्या है? जो किस्मत में नहीं होते, किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? कंशिंग नुना कन्हू म्या लव तोर कंता तोर निम्या लव तोर खा इंगे तिंगे शिंग नुन्यान अनमानी ते ने खान मिनिन तोन तीर खेर छिन ले ती जो ना अनी जो। और यहाँ पर मेरे दोस्त जाम की तरफ से संदेश आया है। जाम हियान, हेलो अर्जे, नमस्ते, वी एल सुप्रभात। यस, आपको भी सुप्रभात जाम। चौन वी एल तू ना के दिन मुंशी अच्छन दू इन और थलाक दिन है रंथन थपा हेती लम के चुआन थुंग के चुआ थे हुन हुन कलव इन रिपोर्ट ले अंग ओ वो इन ट्रिसेल न छत तक नहीं आ लॉन्ग तक आई ड्यूटी थे ना दो सकना इतान कहलाने और जे वी एल कचरा छुआ कंग ओ जा में ही चरा छुआ कह रही दू एम चरा छुआ लो मैं अंग ओ कचरा चुआन तोक मे रो से तरो चुआन चरा देव खा रिजल्ट इलो नहीं दोनिया ओ चुआन चुआन उचे पे अहियान मैसेज दंग रोन थोन ले RJVL vi kung tia hian khom ma chem kha han sai fia to se han request hin la aron ti a kung te mi lo langai tha e mo u chi pe an hei khom ma chem ti lam pang kha lo sai fia ro se a ti che nia o lo sai fia nge yang che ma se all deo kan lon ron zia kang che helen ni hian RJVL nui moi mil chanu. Next ka RJ Miki tan kan thansak te. Kan thansak ve te ang. Kangai riau mai kan pa siat lawin. Chuan ni tan po oran tiani. Kan pa siat law lai tak ka. Poi mo chi na ni tero. Chuan el jet sai law hian. Duty nuam. Duty nuam. Itan hian geni bon geni bon nuam kan lo ti chin lal van duty nuam iti hian o iti hian geni bon nuam kan lo ti chin lal van elze sa lo hian ron ti poka ole o alom om lo tu ke zan वे कुंगते हैं मेरा किस्मत खराब है अरुंतिया। ऐसा नहीं कहते कुंगते, किसी भी का किस्मत खराब नहीं होती, मतलब खराब नहीं होता है। भगवान जैसा हमारे लिए जो सोचते हैं ना वो अच्छा होता है, ठीक है? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी किस्मत खराब हो, ठीक है? इन किस्मत का मो तू ना इन दिन हूं खा छलो अंगा खान लविन गाई रे रेंग सु ओ चुचु नि टॉप मई नि चान कुंग ते उची पे आ खान खोम हचिम चुंग चांग ती बे खान रन सुई फ्या ला अति आ तुचु कान रिक्वेस्ट से नि ओ तो चलिए फिलहाल मेरे दोस्तों मैं गीत की तरफ चलना चाहूंगी। तो गीत सुनाना चाहूंगी प्यार आता है रितो रिबा और श्रेया घोषाल के आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को रितो रिबा और श्रेया घोषाल के बहुत खूबसूरत आवाज में गाया गीत प्यार आता है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का समय अच्छे से बीता रहे, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर और मेरी मेरी बातों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे या फिर कुछ कुछ कर रहे होंगे। आप सभी अपना ख्याल रखना, अच्छे से जाना, ठीक है, और अच्छे से जाना, अच्छे से पहुंचना, अच्छे से करना अपना काम। आप सभी के लिए ढेर सारी दुआएं हम FM 100.7 से देना चाहते हैं दोस्तों। यस, दे रहे हैं और देते रहेंगे दोस्तों। और यहाँ पर कुंतिया मैसेज रोंथेगा, कुंते हियान और चौन विपिन, विपिन की तरफ से भी संदेश आया है। और चौन कुंते मैसेज चिकन चार मसल बहुत अंगे कुंते हियान उची प्यार रिक्वेस्ट खा अरुण दिलोटलिंगा फेल छीनन्या उची प्यार ही जो कंगाई पोई मो लोम तांगा नहीं तरो। क्या करे, वो इतने स्मार्ट है, हैंडसम है, स्वीट है, क्या करे। तो कुंते लिखते हैं कि खोंग खोंग मा चेम चु चेम बिल तक श्याम लो सोईना ओ चुआन तुम छी के ले फोंग पुइनु अनिन सुआल खान राल दोना खान फोंग पुइनु खा खोंग मा चेम अपे तुम छी एरो चेम श्याम तक अपे आ अनिन सुआला तुम छी निन फोंग पुइनु खा अफिक मोक मई ओ जुटिचुआन ओ खमी स्टोरी खा अजय वेली खा ना लो शिफिया तानी जुटिचु एंटिकलाई माइन उची पिया हियान खोम चेम मीन पेदोन लो और दूसरा संदेश आया है खाते पहना जो वी अली छियानते पत्नी भी कुंग ले रे जिल जाम ले रे सुमो अनमुन नुंग अपिया अनदोजेल अनदोजेल मो इलो शत लौता कि नो रोन ते बैट सुंग ते सुंग खाते पा कन शत सालोम अनलिम ना खा कनलिम ना निलत सिया। और इस खंड के लिए लास्ट संदेश मैं पढ़ना चाहूंगी जो मेरे दोस्त विपिन की तरफ से आया है, और उन्होंने लिखा है आज विपिन नमस्ते, आपको भी नमस्ते विपिन, आपकी सेहत कैसी है, आप ठीक हो गए है ना। और शायद मैं ये समझ रही हूँ कि आपका लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रहा है अपने ब्यूटीफुल वाइफ के साथ। और विपिन लिखते हैं कि जो मुश्किल से मिले ना वो है खुशी। यस डेफिनेटली, ये तो मैं मानती हूँ। जो मुश्किल से मिले ना वो है खुशी, जो किसी किसी को मिले वो है प्यार। रियल थाई बुक सिया एफ एम जो ओ या ख्याल रियल देव देव इन वह तम तक एम ओ क्या करूं मैं। आप सभी ना मुझे पागल कर दोगे, ठीक है, आप सभी के प्यार ना मुझे पागल कर देगी, पता नहीं। और कंचा चंदो मंग, जो किसी किसी को मिले वो है प्यार, और जो सबको मिले वो होता है गम। और जो नसीब वाले को मिले वो होते हैं हम। विपिन
kanu lili po ihi isakmen at lay pui khop mai kanu lili po hi o lili po in isakmen atui pui khop mai aron tani kaman lom chin tak em bahut bahut shukriya aap sabhi pyare dosto ko आप सभी की तरफ से जो प्यार आप सभी अपने संदेश के जरिए भेजते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी आपको ढेर सारा प्यार दूं इस FM Zo 100.7 के जरिए। और मैं तो बस चाहती हूं कि आप सभी जिंदगी में अपने लाइफ में हमेशा खुश रहें, आप जिनके साथ रहेंगे इनको पुईते नैन खान वो इनको पुईछोते नैन खान lim dewin nuam dewin hun khal lo mang ze lu la shing nu na hian o shi om in tor hi kan phal lo ni a je vi li pe hi chuan a phal lo bur chu bang chuan in tan a pem zo oya hian kan nui hor hor ze lang aur waisa bhi mujhe to hasna acha lagta hai aur o star tour dew dew te in tan box ya lekin मैं आप सभी को पसंद करती हूँ दोस्तों। और यस, तो विपिन आप अलीली को थैंक यू कहना मेरी तरफ से और आपके इस खूबसूरत पोइट्री के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन भी अच्छे से बीते, आप सभी का दिन अच्छे से बीते दोस्तों। तो चलिए, हमारा समय भी खत्म होने वाला है और मैं वापस आऊंगी दोबारा अपनी खंड को लेकर 10:40 पर। 10:40 अगर लोग गिर ले दो नहीं और आप सभी अपना काम अच्छे से करते रहना और कुंते पो इन खोंग मचेम चुंगचांग ते पो मिन लो शिल फिया वांग खान बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कुंते ओ चान खोंग मचेम मिन पे फल लो तो उची पी ए पो मिन पे ओ मिन का पे फल लाई लो वांग अति ओ अ वांग खान उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आप सभी को नाराज होने नहीं दूंगी तो चलिए, आप सभी का दिन अच्छे से बीते, आप सभी का समय अच्छे से बीते। तो चलिए सुनते हैं इस खंड का आखिरी गीत, प्यार हो जब प्यार हो बेशुमार हो से। मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान के आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए मेरी तरफ से। इस खंड का आखिरी गीत है और तो चलिए इजाजत दीजिए आज वीएलई को। ढेर सारी बातें हम दोबारा करेंगे 10:40 पर। तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए मेरी तरफ से। और मिलते हैं 10:40 पर और आप सभी को आरजे विली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर पे को ओनली दिस सेगमेंट के लिए ओ

हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 दोस्तों। और आप सभी क्या कर रहे हैं दोस्तों जरा हमें भी तो बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और आप सभी ने अपना काम शुरू कर लिया है या अभी तक नहीं किया है या अभी रास्ते पर हैं। आप काम के लिए आप काम के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं और आप पहले से ही पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस वगैरह वगैरह दुकान। और हम भी आप सभी का स्वागत करते हैं दोबारा हिंदी के आज के इस दूसरे खंड पे दोस्तों। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए आप सभी के दोस्त आरजे वीएली हिंदी के खंड पे। और चलिए हम अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ नागते हैं पाका फरमाइश की दिल का रिश्ता से। तो चलिए सुनते हैं और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का इंतजार रहेगा आप सभी के प्यार भरे संदेशों का। ठीक है तो चलिए सुनते हैं दिल का रिश्ता मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को दिल का रिश्ता, यस, हमारे दोस्त हाँकते पा बिल्कुल क्लियर का फरमाइश गीत, यस, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों. तो अब चलते हैं अगले गीत की तरफ. और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके. और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये गीत जरूर पसंद आएगा दोस्तों. और इस गीत की तरफ चलने से पहले चलिए आइए देखते हैं कि किसका संदेश आया है. Elzat salau hian moilu tuk aron ti a ole vanlom om chon elbi ren thla hian rjvl i o moilu tuk le inuirinal lutuk mai ngai ngai thla thei a dam taka ka om hi kalomani nal deu deu kha lo play la a thei a rem chuan phela na sha kha itan le fm ngai thla tu zong zong ta no ron ti ani e khai kan tumang kan ngai tha ang oh chan kung te hian a chemo vl ke khom phat chem khachu ka u jelal za ma kan pe dai donya o ron ti ni ka phal bik lo ale to chaliye vain chu nuam a nuam dang dai kan ti tiang eh नोमिन टीवी एम तो चलिए पोन लंपंग ही कला छुआक म्या लवा पोन लंपंग बरुआ की एंगे ओ नीते असा छा एम इन छुंगा कला ओम सर सर मया के ही एंग पोचुनी से नी खो खो छतक मै कन नै बेसे इला यस तो कन सर पो खान मो कन सर कन डायरेक्टर खा अरन दा कुरकुरा kam mu chiang rao pui mei si a zu wang chuan next a hian o kan bu bear kan sar bear ke liye mai ye agla geet pesh karna chahungi dil laga liya maine tumse pyar karke aur wo abhi engineer room mein jayenge aur chai piyenge chai peene ke baad apne room mein jayenge उनके लिए मैं ये गीत पेश करना चाहूंगी. तो चलिए सुनते हैं इस खंड का अगला गीत आप सभी के लिए मेरी तरफ से.

वेल दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा? दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके. तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गीत पसंद आया होगा. दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके. यस, मैंने भी दिल लगा लिया है आप सभी से प्यार करके. और आप सभी से प्यार करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा है. आपका मतलब यस, मेरा प्यार आपके लिए एक सच्चा वाला प्यार है, ठीक है? मैं झूठा वाला प्यार मैं किसी से नहीं करती, ठीक है? और आप भी ये मत करना, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप निभाइए उस प्यार को, ठीक है? निभाने वाले इंसान ना सच्चे इंसान कहलाते हैं. इसलिए दोस्तों, कि किसी ने कहा है कि निभाने वाले के बीच दूरियां कभी नहीं आती. जिनको रिश्ता निभाना है ना, वो हर हाल में निभा जाते हैं. यहाँ सब कुछ मतलब जिंदगी में यहाँ सब कुछ नियत और विश्वास पर ही निर्भर करता है. कभी पास रहकर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. क्या करें, जिंदगी है दोस्तों. पास रहकर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. और ये जिंदगी भी क्या चीज है ना दोस्तों, पास रहकर भी दूर हो जाते हैं और एक दूसरी जिंदगी दूर रहकर भी एक दूसरे का साथ निभा जाते हैं. कभी-कभी मैं सोचती हूं कि ये मोहब्बत, ये प्यार, ये क्या चीज है. कि हम जैसे इंसानों को कंफ्यूज कर देते हैं. क्या आपको भी

उन्तिया की तरफ से संदेश आया है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। यस, कुंतिया ख्यान अजय मोबियल जिलजाम को फांसी दो। वो बहुत बोलता है, मैं उससे नफरत करता हूँ। और ज्यादा नाहिक छियार नुआम अंगसी खान वो। पर कुंते ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं जाम को क्यों फांसी दूँ? उससे ज्यादा तो आप बोलते हैं, ठीक है? और आप उससे नफरत क्यों करते हैं? वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि मैं आपसे करती हूँ। जैसे कि मैं अपने उची पी को करती हूँ, उसी की तरह मैं भी आपको करती हूँ, वो भी आपको प्यार करता है। तो चलिए, इस तरह हमारा साथ, मतलब आपका और हमारा साथ, एक दोस्ती का साथ हमेशा जिंदगी भर चलता रहे, जब तक ये एफ एम सो ओय 100.7 रहेगा तब तक, और नहीं रहेगा तो भी। यस। और विपिन की तरफ से संदेश आया है, आज भी अल्लाह अल्लाह है। यस, ऑफ कोर्स अल्लाह है, अगर आपके पास हो तो, और मेरे मेरे प्लेलिस्ट में भी हो तो, ठीक है? अल्लाह थे जवान है मिला, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, दिला खा मिल लो प्ले सकतिया ओले, मैं ढूंढती हूँ पहले, ठीक है? फिर अगर हमारे प्लेलिस्ट में होगा तो हम सुनेंगे, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों मुझे सुनने के लिए। तो चलिए, विपिन के फरमाइश गीत की तरफ चलने से पहले ये गीत सुन लेते हैं, मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिलेगा तो हम ज़रूर सुनेंगे, ठीक है? तो सुनते हैं, दिल क्या करे आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को गीत, हिंदी के गीत मेरे साथ आरजे वीर के साथ आप सभी को सुनकर अच्छा लग रहा होगा और आप सभी को पसंद भी आ रहा होगा। अपने काम करने के साथ साथ आप जो भी कर रहे हैं, है ना दोस्तों, आप अच्छे से करिएगा। बहुत ही खुशी और खुशियां और आनंद के साथ। अगर आपने अभी तक मुस्कुराया नहीं है तो भी अभी मुस्कुरा दीजिए मेरे लिए।

क्योंकि ना जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आप बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो विपिन भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अभी भी मुस्कुरा रहे होंगे। कुंगते नंग इनुई इनुई खिवे बुरेम लो नुई सांग उला लिमदे उखान नुआमदे विन इन हुन का लो मंगजेल उला ना देखा तुई दे विन लो थोकजेल उला, ठीक है। यस और जामन आज भी अलवो इनसे चु कुंगते यन नो अमलो चेन न सवे इसेकमेन आ अरुण दिया है अरुण सो इसे न सको मैं चे खाई हूँ रो ते अरुण दी चे ना ओ अचोंग थे सी ते दिया चान एलबी रेंट है खान। यस की तरफ से जो फरमाइश गीत पहला नशा वो मैं सुनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं ढूंढूंगी हमारे दोस्त विपिन की तरफ से जो फरमाइश की थे। अभी अभी मुझे नहीं मिला, मिल रहा है, इसलिए जो एलबी रिंथे का जो फरमाइश की थी विपिन से पहले आया था वो मैं सुनाना चाहूँगी, पहला नशा। और चलिए आपसे बातें होती रहेगी। और दोस्तों हमारा समय ना 11:20 तक है, ठीक है। 11:20 तक का ये समय है, ये खंड, तो हम ढेर सारे बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब से तो बहुत ही कुछ कहना है लेकिन पता नहीं, हमारे पास समय भी नहीं होगा आप सभी को बताने के लिए, शेयर करने के लिए। बस चाहती हूँ जिंदगी में कि आप एक सच्चा इंसान बने। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं पहला नशा मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

तो मेरे दोस्त तो ये था एल्बी रेंथे की तरफ से उनका मनपसंदी गीत फरमाइश गीत यस पहला नशा। और अब हम सुनेंगे हमारे दोस्त विपिन का फरमाइश गीत तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। किसको ना देखकर आपको चैन आता है? मुझे या लिली को? यस डेफिनेटली लिली को ही ना। लिली को ही बिना देखकर आपको चैन नहीं आता, ये तो हमें मालूम है, पता है। विपिन साहब,

तो चलिए विपिन के विपिन का फरमाइश गीत मेरी तरफ से, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

0: हॉलिडे।
1: वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे दोस्त विपिन की तरफ से जो फरमाइश गीत आए थे, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, और हमारा समय खत्म होने वाला है दोस्तों, आप सभी को एक आखिरी गीत के साथ अलविदा कहने का फिर से समय आ चुका है। और यस, मैं आपको बहुत ही एक खूबसूरत गीत सुनाकर अलविदा कहना चाहूंगी। और यस, पर यहाँ पर जाते जाते आप की तरफ से जो संदेश आया है एलबी रिंथलई और मेरे दोस्त विपिन की तरफ से, एलबी रिंथलई हन आरजेवीएल लुंग इवतिलेंग वे इप्ले इप्ले नलसी गलत हन इलाउती इलाउती आ कलोम लु तुके ओ गलत हन इलाउती आ ओले कैसे ध्यान में के स्वान मेरे दोस्त विपिन की तरफ से आया है संदेश आरजेवीएल कलथन मिन प्ले सगवांगिन कलो में, इसलिए आप लिली को मिस कर रहे हैं। रेडियो प्ले ही रेडियो आ प्ले ही नल बीक थे ए ओ न्यादो रेडियो ही सुदंग दाई बीक ए मलोम रेडियो ला हन ले खागे ही सुत्रो, मतलब चाहते हैं तो हम खुद भी सुन लेते हैं, सुन सकते हैं, है ना। लेकिन रेडियो ही मतलब ऐसी चीज है ना जो बहुत ही सुनकर सुकून मिलता है ना। यस, और वही ना शिलोंग आ मीटिंग टूरिन कंसिन ले दो ना अरेम हुन हुन इस सेगमेंट कलो लू तंग मुचुंग में विन कंगाई था आ तो फील बेंग बेंग अन इन्नुई कल संदोन बांग निमो। यस, तो चलिए जल्दी लौट के आना, ठीक है। लीली को ज्यादा अकेला मत छोड़ना, अगर साथ अगर हो सके तो लीली को साथ लेके जाते तो अच्छा होता। इस तरह आप दोनों का प्यार हमेशा जिंदगी भर चलता रहे, एक ईमानदार सच्चे प्रेम के साथ आपका ये जो संबंध है ना अपने वाइफ लीली के साथ हमेशा चलता रहे विपिन, मेरी यही दुआ है। और आप जाएंगे तो अच्छे से जाइएगा और जल्दी वापस लौट के आना, ठीक है। यस, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे जाने का समय आ चुका है और दोबारा मिलते हैं दोस्तों। मैं वापस आऊंगी दोबारा हिंदी के खंड को लेकर 12:40 पर दोस्तों, 12:40 पर मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर। तो आप भी अपने काम करने के साथ साथ हमें सुनते रहना इस FM 100.7 को दोस्तों। और मैं वापस आऊंगी प्यार भरे बातें करने के लिए। और मैं नहीं चाहती कि आप जिंदगी में कभी भी अपने लाइफ में दुखी हो, आप कभी बुरा मत सोचिएगा।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आरजे वेली की तरफ से गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7 दोस्तों। और आप सभी का समय, काम, दिन कैसे चल रहा है दोस्तों, जरा हमें भी तो बताइए कि आप सभी का दिन कैसे बीत रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन, समय, काम अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस एफएम 100.7 पर, हिंदी के आज के हमारे तीसरे खंड पर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। और हमारा समय पूरे 1:20 तक का है दोस्तों। तो आइए, आप सभी का इंतजार रहेगा आप सभी के प्यार भरे संदेशों का, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत, तुमसे ही, मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तुमसे ही मोहित चौहान के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने कहा था कि आप सभी का समय कैसे चल रहा है, आप सभी का दिन, यस, काम, सभी सब कुछ अच्छे से ठीक से चल रहा होगा ना दोस्तों। यस, हमें आपके अगर आपके पास वक्त होगा हमसे बातें करने के लिए और हमें संदेश भेजने के लिए, हम आपका जरूर मतलब इंतजार करेंगे 1:20 तक। और अगला गीत सुनाना चाहूंगी मैं, ये मेरे दोस्त जाम का बहुत ही मनपसंदी गीत है, दीवाना है ये मन। यस, उम्मीद है आप सभी को ये गीत पसंद आएगा और

मेरे दोस्त जाम की तरफ से संदेश आया है. जाम अनाजेवियर गुड आफ्टरनून. यस आपको भी जाम ओ चुनुहुन मन नुआम ओले नंगपो ओ जाम प्ले लिस्ट ही प्ले लिस्ट इड्यूटी पुइन एन इन तान ले पुसा मामते नो पामिशन वेन थांग मी तान ले जोरम रिमो एफ एम सो ओंगा तू ते तान पो अरोंतिया जाम हियान कलोम नु तुके ओ जाम तिचुआन गुड बो हियाना जेवानल प्ले लिस्ट आरजे नुंग नुंग ते आरजे ते ते आरजे सांग सांगी आरजे एनेटी आरजे ज्वाल बोई आरजे एंजेला नंग ले इड्यूटी बोई ते बाका पार पारीपू जिलल जामा मातुआंग मिशन वेंग हक्ते बाज ओमेगा सांग ते आमेंग मोई ते आले दिन पुया फलकोन वेंग लाई पाकुंगा पाकुंगा रामथुइरियल कंशियाथर लेनान जोनगस बॉय मामुनी नूरी साइलाओ गुरी साइलाओ ले सोमी से सोंग तान ओ तीना न्यांग त्रो इस सोमी ज्यादान मैं मैजू का कॉन्फ्यूज ट्रे पलोम गुड बॉय तम तक तम रेंगनी इरोन ज्यादान मोल का सोमी सोंग इरोन ज्यादान मोल खानी ओले पाएंगा मैसेज पाएंगे नजरे मैसेज का दुंगले आमार अच्छू. फिलहाल मैं इस दीवाना है ये मन गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूंगी पाएंगा का संदेश. तो चलिए मेरे दोस्त जामा का मन पसंदी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम दीवाना है ये मन सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गाएगी आप सभी के लिए.

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को। यस, मेरे साथ मेरे दोस्त जामा जामा का बहुत ही मनपसंदी गीत जो उनको बहुत ही पसंद है, दीवाना है ये मन, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। हमें भी बहुत ही पसंद आया है इस गीत को सुनकर दोस्तों। और तो चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, तेरे दिल का रिश्ता मेरे दिल से पुराना है। और इस गीत को सुनाने से पहले पायेंग का संदेश में पढ़ना चाहूंगी। पायेंग ह्यान RJ anga ilo duty ring ani mo kaman vetsa e segment nu nung lam poni se nang ma chu ila ila ngai ring thawa i omoi na le i mit ming moi na te po in ngai an la o thau chuan man dai de ma ila enge mo enge mo poi chua enge mo poi chuang i te i that I chat ngai rengin I la chat hau ni lom ni. Oi. Oh, baeng kan noi hi ban ti zo chin tang em. Ko ma te full stop te da me chin la. I cute box ya am wai thak. I message ron ton da la ya. तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका भी मेरी तरह दिन अच्छे से बीत रहा होगा। जामहियाना जो भी कबन लोम तक कहला थू खुंग जी अम्मी एस एम एस हुन ला या का रिक्वेस्ट टू एम एम दीवाना है ये मन मिन लुई आ हे ही अलोम इद्यूती हुना द्यूती हुन का नाक लेल एम एम छन्नी कलो में ओ Olezam Kepo kalom lo toke o Kovel hi zong a wai thaka ni hi tira o To chaliye filhal Sunati hoon aap sabhi pyare dosto ko Ya sunana chahungi Tere dil ka rishta mere dil se purana hai dosto Sonu Nigam ke awaaz mein gaya geet Meri taraf se aap sabhi ke liye Is khand ka dusra geet aap sabhi ke naam

तो दोस्तों, आप सभी को सोनू निगम के आवाज में गाया बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो मुझे बहुत ही पसंद है। और जब भी मैं इस गीत को सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। तेरे दिल का रिश्ता मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। ऐसा रिश्ता, यस, ऐसा रिश्ता ना शायद आपके पास हो सकता है अपने माता पिता के अलावा। माता पिता और भाई, ये सब, मतलब इन सब से तो रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन मतलब जो एक जो एक लड़का और लड़की के साथ जो वैसा वाला संबंध, उसके बारे में मैं कह रही हूँ। तो चलिए, आपको गीत पसंद आया होगा और चलिए हमारा समय

भी चला जा रहा है, काश हम वक्त को रोक सकते हैं ना। ओले। और एक बात मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि कि ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। जिंदगी में एक बात हमेशा दोस्तों कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई किसी का खास नहीं होता। आप इस बात से एग्री करते हैं या एग्री नहीं? इनपो मैम। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? जाम पुजाई माते पुसमो जीते का हंजो छिनते। ऐसा होता है क्या? लोग हमें टाइम पास के लिए ही हमसे दोस्ती करते हैं। लेकिन मैं ये बात कभी, हाँ कभी एग्री करती हूँ, कभी हाँ कभी मानती हूँ कि लोग ऐसा, मतलब इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बस टाइम पास के लिए हमसे दोस्ती करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि दोस्तों कि आपसे कोई भी टाइम पास के लिए दोस्ती का संबंध निभाए, ठीक है। मेरी दुआएं आप सभी के साथ हमेशा रहेगी कि आपको बस अच्छे इंसान हमेशा मिले, और आप हमेशा खुश रहें। और यहाँ पर मॉरिस की तरफ से संदेश आया है, अमन सही तक मॉरिस अहियान एंगपो चुनी से मिस आरजे गुड आफ्टरनून। यस आपको भी ये प्ले लिस्ट है वह लुंगलेन थाक वोंग वोंग वे ओ तेरे नाम हमने किया है ती इलाही रोंटेल ले के उला। तेरे नाम हमने किया है एंगलांगे कमन चलाओ चौन। तेरे नाम हमने किया है कला उसों चिन दुनिया ओ रतन हुन अनिलाउतलाच। Leng bek thau lom next le tur chia kha zo o fm ngai la tu zong zong te dan ka lan ve ke chuan di nga ya lung leng om kho har a in dom kun ngoi ngoi te ta oh in dom kun ngoi ngoi te tan po ka ron than bo ke i tan po o chuan ka ta ka ho turin tu sakna sang ber kan han che aron dine mori sa hian fel chin le mai idi pi te chu van nal vel van nal vei vel ve a chan a chan el zat sai lo hian a lal van zamanen kan lo la kan zamanen kan lo a lo fe ve ru motor tham thing akal thei a motor tham thing akal thei aron ti ni e a cha gom le me ya kan tum don nia o genau kalo ngai tha ve reng che ania o imo he cinema hall a hian hindi film te kha en ve man en ve man em ke chu ka en ngun te ania ron tia en man ka en ve man lo in ka sia ka she mi a lo ma te san a za ma hen rgbl an nui kur kur ringot an chi pya thiam lo manipur lam de hi an ni a hindi trong an thiam phum fe lo de wa i play le i play ero an zai pui long long thei si hian ole ole Arjavil, good afternoon le i play list i play list an lu tuk i play le tur kha i tan yaw le o ron de bo kan ni albiren thai po ke segment an pyan khan ron lang ve si a fel chin le mai mi lo ngai che chi na i hun te i na te chata kai tho sel the nan tu sak na kal han che ni o te chuan good boy hian ro asur te pin ka shia alum alum dan mm hi harjivan lal kalo ompu mm che o chun thil te i a to m thing pui lo in thar thing pui lo in tharu
मतलब इनके अब दोनिया ओ के चुल्लुम के तिवा के लोहे बोत के दिले तो निमिन लाते पो शो ते कपाय कपाय मो कसिन चर चर नि चु चना चोंग मि जो के एंगे आर छे वन ल ख्वा लुमा थो अन लो कल आ कवो कवो छेल थ्वाक थ्वाक मै अन लाउ मै मै यंग चो नरेन तानी ए खाय फिल फाइ दे वा इन enge bon fai angai ni kha hai fai la web dinani lowin mo o ole ole to chaliye filhal geet ki taraf chalte hain main sunana chahungi aap sabhi ko chalte chalte bahut hi khoobsurat geet meri taraf se abhijit aur akayagni ki awaaz mein gaya geet aap sabhi ke liye meri taraf se

चलते चलते दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत। यस, चलते चलते हम जितना भी चलेंगे ना दोस्तों, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हम हमें किसी भी मोड़ पे ना एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलते चलते अगर आपका प्यार सच्चा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। ठीक है, तो आप खुद से पूछिए कि आप जिस इंसान से बेहद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो एक सच्चा वाला है या छोटा वाला। तो अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं ना दोस्तों, बस आप सच्चा वाला प्यार कीजिए और जिंदगी आपको बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी। ठीक है, यस, बस आप एक सच्चा इंसान बनने के लिए कोशिश कीजिए। बस वही आपको करना है। जिसके मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी में खुश रहने के लिए एक सच्चा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो इस बात को याद रख कर हम सभी आइए कोशिश करते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, है ना दोस्तों। तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है, तो क्या करें, हम समय को तो रोक नहीं सकते। तो फिर आप सभी को मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ अलविदा कहना चाहूंगी इस क्षण के लिए, केवल इस क्षण के लिए दोस्तों। और मैं फिर वापस आऊंगी अपने आज के आखिरी खंड को लेकर 2 बजे, 2:05 पर। यस, दार्ढ़ीले मृदंगा आ, मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने खंड को लेकर। तो शायद मेरे मेरे किसका कलम स्वाला गेम ओ राल दो ना राल राल दो नगे राल दो न देखा ओ अरे बोक्सी आ। तो अब उनकी उसकी तुम छींगी आप सभी से विदा लेना चाहेगी। तो चलिए, ये आखिरी गीत तन्हाई तन्हाई उदित नारायण और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत से मैं आप सभी से विदा लूंगी। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी अपने खंड को लेकर 2:05 पर। ठीक है, तो आप अच्छे से अपना काम करते रहिएगा, ठीक है, और मुझे ज्यादा मिस मत करना और कभी और किसी को भी ज्यादा मिस मत कीजिए दोस्तों। ठीक है, लव लुंग लेंग वक वक लव उला नंग मानी इंगाई लव तू फे फे फे फे ते चू ngai रे रेंग लव तू। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं ये आखिरी गीत इस खंड का मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और आरजे वेली को इजाजत दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं 2:05 पर। तो चलिए, आप सभी के लिए ये गीत मेरी तरफ से।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वीएलई की तरफ से फिर एक बार। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जोओए 100.7 दोस्तों, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड में दोबारा, और मैं हाजिर हूँ आज के लिए हमारे आखिरी खंड के साथ दोस्तों। इस खंड के बाद तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी और कह नहीं पाऊंगी, मतलब कह नहीं सकती कि कब दोबारा आपसे मुलाकात हो फिर। तो चलिए हम भी इस खंड की शुरुआत करते हैं, और मुझे आपके प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा। और आप सभी ने दोपहर का चाय वगैरह वगैरह कुछ खा लिया है या नहीं? अगर नहीं खाया है तो अभी खा लीजिए, ठीक है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से चल रहा होगा। तो आइए सुनते हैं तन्हाई तन्हाई, इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई। यस, तन्हाई अक्सर एक दूसरे को पास ले आ जाती है। अगर जिसकी आप अभी अभी आप उनसे डिस्टेंस में हो तो भी आपका जो डिस्टेंस है ना, आपको जरूर पास ले आएगी। तो चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, शाम भी खूब है पास महबूब है। जब हमारे पास हमारे साथ जब महबूब होते हैं तो हमारा दिन है ना दोस्तों, हमारा समय हर पल बहुत ही अच्छा लगने लगता है, है ना दोस्तों। यस yes. और ऐसा आप ही फील करते होंगे, मैं तो हमेशा फील करती हूँ। लेकिन कोई साथ तो हो। तो चलिए कहते हैं कि मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर हम जब जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े, है ना दोस्तों। तो इसलिए हमेशा मोहब्बत करते रहिए, ठीक है। अगर आप को मोहब्बत में मतलब आपको मोहब्बत ना मिले आपके मोहब्बत में, तो भी दोस्तों आप ट्राई करते रहिए। पीछे मत हटिएगा, ठीक है। बस आप मोहब्बत करते चलिए, आपको जरूर आपके सफर में, जिंदगी के सफर में आपसे मोहब्बत करने वाले जरूर मिलेंगे। तो चलिए सुनते हैं इस खंड का अगला गीत, शाम भी खूब है पास महबूब है, मेरी तरफ से आप सभी के लिए। कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गाएगी आप सभी के लिए।

यस, आशिकी के लिए और क्या चाहिए, शाम भी खूब है, पास महबूब हो तो कितना अच्छा लगेगा ना। और तो चलिए यहाँ पर मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है और जामा लिखते हैं कि RJVL वो जायमा ही इस सिग्नेचर म्यूजिक अचिन स्याथा मोले यस वीएल वेली लव किर लेता अतिथि थप मोले कनपनी हियान आचिल बोर्ड से नेक्स्ट सॉन्ग पुजाइमा ने इन पनी तान ओ अरुण दिए नहीं कि चाह बाजा महियान ओ थैंक यू सो मच पुजाइमा जी मेरे सिग्नेचर ट्यून को पहचानने के लिए यस और जेलरन थे ख्यान आज हिंदी लाही गई था का नुआम कतिथिन इपेले तुर खा त्वांगी रुथी मेरियाई ले ओलेविया ते लोई था गतान कलाउ थंग वे ए ओ अरन दी आ ओले अलम ओम लुतुके चान लल दिन बुया फल कोन बेंग ला ख्यान आज इप इप्लेले तुर खा नंग मा तान ले लौ ngai thabe zong zong tan le kachian te vengshang shangami te rcr rin mo ya tuanga ma zawarin mo ya walpuya a chin china loma te puya te tan laldin puya fel konveng la hian aron than sak ani fel chin le me laldin puya te reu hi achian te athlan sak lom china achian te thlan sak achian athlan sak te hian an lo she tura ngai bok ila tiro o chian te hi an lu china nia an lu tak zet ni chuwangin chian te hi ngai poi mo tura nia ama ero chu ngai poi mo tia khan tok chin te hi om ve ni mo ole te chaliye filhal अगला गीत सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं दोस्तों, हमारे पास कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जाएंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत, यस उदित नारायण की भी आवाज है इसमें, जागे जागे बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और दोस्तों यस एक संदेश मैं मिस करने वाली थी जो है हितेंद्र दास जी की तरफ से। हितेंद्र दास जी ने मुझे यस गुड आफ्टरनून विश करके संदेश भेजा है, तो हितेंद्र दास जी को मेरी तरफ से भी गुड आफ्टरनून हितेंद्र दास जी। आप सभी आप और आपके परिवार का आप और आपके परिवार दोस्त यस आप जहां पर भी है आपका दिन भी अच्छे से बीता होगा, है ना यस। और गुड बोहियान आज वानलाल कला ओम और बोका ओले। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत मेरी तरफ से, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को यस जागे जागे सोनू निगम के आवाज में गाया गीत, अलका याग्निक उदित नारायण के आवाज में गाया गीत आप सभी को बेहद पसंद आया होगा दोस्तों। अब मेरे जाने का समय आ चुका है दोस्तों। जी तो करता है कि आपको छोड़ के कहीं ना जाए, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय नहीं है और हम समय को रोक भी नहीं सकते हैं। और तो चलिए फिलहाल मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूंगी और आज स्पेशली दोबारा मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी कि आप सभी को मेरा साथ देने के लिए, हंसाने के लिए मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूं, क्योंकि आप हमें कभी नहीं रुलाते हैं। आप कभी हमें नहीं रुलाते हैं, इसलिए मुझे आप सभी से बहुत ही प्यार है। ठीक है, आप हमेशा हमें हंसाते हैं, रुलाने के बजाय आप हमें हंसाते हैं, इसलिए आपसे बहुत ही लगाव है और हम आपको छोड़ के तो नहीं जाना चाहते, लेकिन छोड़ना तो पड़ रहा है। लेकिन हम मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी दोबारा इस FM 100.7 पर दोस्तों। तुमका राजन कहीं तुम तो लो मैं थे नहीं ओजाम। तो चलिए फिलहाल आप सभी अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, ठीक है, और अपना ख्याल रखना। तो RJ वेली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बाय।

0: कंट्रोल रूम इंजीनियर ड्यूटी।
1: समाचार के साथ मैं कनक लता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
3: दे ऑल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
1: अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है, जो देश के खिलाड़ियों को सशक्त बना रही है और प्रत्येक नागरिक को खेलों को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के ओलंपिक मूल्यों का जश्न मना रहा है, जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने सुबह फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM वॉइस 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो प्यारे श्रोता, मैं हूँ आपके आरजे नूबई। और जी हाँ, आज के शाम फिर से आप लोगों को मनोरंजन करने के लिए यहाँ फिर से बैठी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा साथ पसंद आएंगे। तो मेरे प्यारे श्रोता, इस खंड में हम सुनेंगे अलग अलग फिल्मों का अलग अलग गीत। तो हम शुरुआत करेंगे जोश फिल्म से और गीत की बॉल है सैलरू। तो आइए सुनते हैं सैलरू।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था जोश फेम से और गीत की बोल है सैलरो सैलरे। अब हम पढ़ेंगे आपके संदेशों को हाँकते पाबील खुतलेरियान आज दुबई तलाइलम ची बैले जाने निद्यूती हुन नुआम तका इमन थे ना दूसकना लांचुंग चे इन प्लेले तुर खा मिंग मोईते अपार पारिपो अमेगा सांगते आई तान कलाने अरंतीने नाकते पाफेल ठीने मिनरन थन मसबेर तुम ओ मिंग मोईते ही सकेन नाइस चुवांग चाहे नाकते पाखातले मिन जाने चो अलल देव भी कंग ओ मिंग मोईते आई खान ओ तो जी हमें प्यार शाता मुझे यहाँ मिला है मैं मोहिते की ओर से नुबई नमस्ते न्यूती द्यूती नुआमले अरुंतिया आपको भी मेरी ओर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और जी हाँ आपको आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा कुणाल गंजावाला की आवाज में शहजादे। तो आइए सुनते हैं शहजादे खास करके नाकते पाबील खुतलेर लेमिंग मोइते लेंगाई लतु जंग जंग तानो।

तो कैसा लगा आप लोगों को? अभी जो हमने गीत सुना था वो था जोश फिल्म से, और गीत की बोल है हाय रे मेरा दिल। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर। और मुझे यहाँ के वाला की ओर से मिला है, वो लिखता है आशनु बेगलुद्व। ए अरंतिया, आपका स्वागत है यहाँ आज का हमारा सबसे पहला हिंदी का खंड में के वाला खकन लो। वेलकम लो तुकनिया। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हमारा अगला गीत होगा तुम तो सागर जैसी, और ये गीत है आप मुझे अच्छे लगने लगे हो फिल्म का गीत, और ये गीत आप सभी लोगों के लिए है।

0: ए सेटिंग हुई क्या?
1: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार।
0: ये उसका स्टाइल होगा, उठू बिना दिल में हाँ होगा।
2: तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था अपन बोला, और वो जो फिल्म का गीत है, इस फिल्म का जो अभिनेता है शाहरुख खान, अभिनेत्री है ऐश्वर्य राय और प्रिया गिल, और एक और अभिनेता था वो था चंद्रचूड़ सिंह। और जी हाँ, मेरे

श्वेता, ये जो गीत हमने सुना था वो था हेमा सरदेसाई की सुरीली आवाज में, और शाहरुख खान के मधुर आवाज भी शामिल है इसमें। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब समय आ गया है इस खंड के लिए आप सभी लोगों से विदा लेने का। फिर से लौट के आऊंगी आज रात 6 बजे, तब तक आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM जवाब। इस खंड का हमारा आखिरी गीत है लकीर फिल्म से। इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ।

नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, आप सभी लोगों का यहाँ हमारा दूसरा खंड में मैं आपकी आरजे नुबोई फिर से स्वागत करती हूँ। और जी हाँ, इस खंड में हम सुनेंगे हिंदी का फिर से अलग अलग गायक गायकों का गीत। तो हम शुरुआत करेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, बोल गोरी बोल तेरा, आप सभी लोगों के लिए।

दुनिया में प्यार सदा ये था, लता मंगेशकर और मुकेश के आवाज में बोल गोरी बोल। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा शब्बीर कुमार के आवाज में बहारों के रंगीनियों। तो आइए सुनते हैं बहारों के रंगीनियों।

तो मेरे प्यारे श्रोता, ये था शब्बीर कुमार के आवाज में बहारों के रंग गिनियों। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा अरिजीत सिंह की आवाज में जान निसार। तो आइए सुनते हैं जान निसार।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था अरिजीत सिंह के आवाज में और गीत की बोल है जान निसार। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा सनम पुरी की आवाज में मेरी सपनों की रानी। तो आइए सुनते हैं मेरी सपनों की रानी आप सभी लोगों के लिए।

नमस्कार, आप सभी लोगों को फेसबुक हिंदी का फेसबुक लाइव में मैं आपकी आरजे नुबई आप सभी लोगों का यहाँ फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारा लाइफ है और इसमें मैं अपना पसंद का गीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये है आरजे चॉइस, तो मैं आप सभी लोगों को अपना पसंद का गीत सुनाऊंगी। तो हम शुरुआत करेंगे दिल क्या करे फिल्म के गीत से, और हमारा गीत होंगे प्यार के लिए। तो आइए सुनते हैं प्यार के लिए आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ, मैं प्यार शाह ये था अपना पहले से बात है और यह न्यूयॉर्क फिल्म का गीत है। बहुत ही खूबसूरत गीत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये गीत पसंद आए होंगे। तो अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा मैं रहूं या ना रहूं, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। तो सुनते हैं मैं रहूं या ना रहूं।

जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, ये था मैं रहूं या ना रहूं। और जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा अगला गीत होंगे दो पत्ते फिल्म का गीत राजन। तो आइए सुनते हैं राजन आप सभी लोगों के नाम।

ऐसे न जाओ पिया, और ये है राजन, और ये द्रौपदी फिल्म के गीत है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा ओथम्स द्वारा गाया गया गीत, और गीत की बोल है सुकून। तो आइए सुकून के सांस लेकर सुकून गीत सुनते हैं।

तो हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था ऑथम्स द्वारा गाया गया गीत, और गीत की बोल है सुकून। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होंगे किस्मत कनेक्शन फिल्म से, और गीत की बोल है इज दिस लव। और ये गीत जो है बहुत ही खूबसूरत है। इस गीत को भी इंस्टाग्राम पर रील्स में प्रयोग किया गया है ये गीत, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए सुनते हैं इज दिस लव किस्मत कनेक्शन फिल्म का गीत।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था किस्मत कनेक्शन फिल्म का गीत, और गीत की बोल है इज दिस लव। तो हम अगला गीत जो प्ले करने वाले हैं वो है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, मासे कंजोंग मेघ दोनने ओ चुआनिन कन्हू चुआनिन करो प्ले यंग। ये मुझे लगता है बरसात फिल्म का गीत है। चू चू रोबिनसन हियान अरुण थांग और पुईते खा करुण छांग मन चेप तो चेने ओ। और बरसात फिल्म का गीत है ये, और ये हमारा इस FB लाइव का आखिरी गीत होंगे। इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। तो आइए सुनते हैं हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, रोबिनसन अरुण थांग।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुबई की ओर से आज रात के हमारे आखिरी खंड में फिर से स्वागतम। और ये खंड रहेंगे 10 बजे से 10:30 तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो हम शुरुआत करेंगे पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाज से, और गीत की बोल है मेरी आशिकी। तो आइए सुनते हैं मेरी आशिकी।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, ये था मैं मेरी आशिकी, और ये पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में है, और मुझे यहाँ दुर्गेश नागनपुरे की ओर से संदेश मिला है। वो लिखता है, गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार, थैंक यू फॉर प्लेइंग सॉन्ग, तुम ही हो, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हितेंद्र दास जी, गुड नाइट आरजे जी। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में, राबता।

तो मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था समझावन, और ये हम्टी शर्मा की दुल्हनी अफीम का गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा आतिफ असलम की आवाज में, बागी 2 फिल्म से ओ साथी।

तो मेरे प्यारे श्रोता, ये था बदलापुर फिल्म से जीना जीना। बहुत ही खूबसूरत गीत है और इस गीत को जब भी हम सुनते हैं तो इसमें तरह तरह के ख्याल आते हैं, क्योंकि ये गीत जो है ये हमारे फीलिंग्स को बहुत ही क्या कहते हैं, हमारे फीलिंग्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि जब भी हम इस गीत को सुनते हैं तो हम फील करते हैं कि जैसे हम किसी को मिस कर रहे हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा मीका सिंह और शेफाली के आवाज़ में, सुबह होने न दे, देसी बॉयज फिल्म से।

तो जी हमें प्यारे श्रोताओ, अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं आज रात के लिए, तो आप सभी लोगों से फिर से विदा लेने का समय आ गया है। तो इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा सोनू निगम के आवाज में तेरे बिन, और इसी गीत के साथ मैं आपकी आरजे नुबई आप सभी लोगों से विदा लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट स्लीप।